बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी का प्रभु सुहावना छड़ छड़ दुनिया अंदर न जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना कुन की मन पाऊंदे।

फिर पटकै रेने तेना दुख ने भुख तिन निधन नू कही। उस इंसान नू उस नर नू कोई दुख ते भुख वापर नहीं सकदी, ओ निर्धन नहीं रह सकदा, ओ निर्धन नहीं रह सकदा। तिनर शोक न हुए तिनर से अंत न लईए, उथे शोक नहीं हो सकदा उसने। तिनर से अंत न लईए तिनर सेव न करे, ओ किसी का गुलाम भी नहीं होगा। तिनर सह सहज समपे, वो गुलाम भी किसी का नहीं होगा, ते हर एक ओनू वेखूगा। सहज समपे तिनर दुलीचे बह है, दुलीचे का अर्थ है दुलीचे का गलीचे, ओदा स्टैंडर्ड एडा उच्चा हो जूगा गलीचे विषय होणगे। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप बिथप है, ओदे विच एनी शक्ति आ जूगी वो राज खो भी सकूगा तो राज दे भी सकूगा, उखड़िया होया नू बसा भी सकूगा। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप बिथप है, सुख लह है तिनर संसार में, इस संसार विच ए सारे सुख ओनू मिलन। अप है पट रिप मध ते सक्याथ तिनर जालप पाने, किनू ए सुख मिलनगे किनू ए वड्याईया मिलनगियां। गुरु अमरदास सुप्रसिन्न गे जिदे ते तीजा गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज जी ते प्रसन्न हो जाणगे, ए सारे सुख ए सारी

राग मारू टिक हुई आत्मा विच अणख जाग उठती है, क्योंकि उत्थे केवल सच टिकिया हुंदा है। सच है निरभउ निरवैर, इसलिए स्वयं धर्म दृढ़ हुंदा है। अजेही आत्मा विच जुर्रत भर जांदी है, बेपरवाह हो जांदी है, कायरता नस जांदी है। ए है मारू दा प्रभाव, सुन कै सुध न रहे कायर की, जब बाजै धुन मारू। फिर मारू राग विच वैराग भावना दी भी प्रधानता होण करके इस नूं प्राणी दे चलाने समय गाउण दी भी प्रथा है। सो युद्धां समय अते चलाने समय इस राग नूं गाया जांदा है। एक पासे तां इस विच जोश है, दूजे पासे वैराग। जोश दी भावना विच भगत कबीर जी फरमांदे हन, सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन कै हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कभू ना छाड़ै खेत। एक वो आत्मदर्शी सूर में हन जिन्ना दे गगन नगर विच दमामे वजदे हन, अते माया तूती दी आवाज नहीं सुनदे। जीवदियां उन्हां नूं मरण दी सोझी हुंदी है, इसलई आत्मक पंथियां नूं आदेश है पहला मरण कबूल, जीवन की छड आस। हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। सारियां हालतां विच मारू गावियां ताही सफल है जे शब्द अंदर है, जे पंच बहराई जित ले गए हन। गुर कै शब्द आराधी है नाम रंग बैराग, जीते पंच बहराइया नानक सफल मारू एह राग। मारू बड़ा प्रसिद्ध अते पुरातन राग है, इसनु कई नामां नाल पुकारिया जांदा है अते भिन्न भिन्न ढंगां नाल गाया जांदा है। साध संगत दे चरणां विच बेनती है कि जिवें श्री दरबार साहिब विच अमृत वेले तों रात तक कीर्तन दियां अठ चौंकियां दी परंपरा है, जिन्हां विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों 31 रागां विच उचारी अमृत बाणी दा कीर्तन निर्धारित रागां विच हुंदा है। उस तों सीध लै के गुरु बख्श कीर्तन दी मर्यादा नूं मुड़ प्रचलित करन लई ही अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन एक निमाणा यतन है। शुद्ध रागां दे सरूपां नूं सर्व प्रमाणित अते प्रमाणिक रूप देण लई राग निर्णायक कमेटी बनाई गई। विद्वानां ने शुद्ध रागां दी इकसारता अते सर्व प्रमाणित प्रचलन लई शुद्ध सरूपां नूं अंतम रूप दिता। यह पहला उद्यम है, इसलिए इस विच रहियां कमियां विचार द्वारा दूर कीतियां जा सकदियां हन। राग मारू दा जो पुरातन स्वरूप गाणिया जांदा सी लगभग अलोप हो चुका है। उसे स्वरूप नूं मुड़ प्रचलित करन लई जो पुरातन स्वरूप निश्चित कीता गया है, उस विच दोनों धैवत दोनों निषाद अते दोनों मध्यम दा प्रयोग हुंदा है। आरोह विच रिश्वत नहीं लगदा, इस दा वादी स्वर गंधार अते समाधि निषाद है। गायन समा तीजा पहर असी दलीप चंद्र बेदी जी दे अति धन्नवादी हां कि जिन्हां ने सानू मारू दा इह स्वरूप दस्या। इह ओह स्वरूप है जो पुरातन रागी रबाबी सिंह गाउंदे चले आए हन। हुण सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी पासो शब्द, मोको कोई न जानत कहियत दास तुम्हारा।

आप जी शिव इतने खमा जाच कर कीर्तन कर दिया बाणी पढ़ दिया आप जी अनंत शिव कंध को मैं खुला ही होगी आप जी अपने दास जान खमा करोगे आयो संगता वालों पूजा स्थान वालों बेंत माया शोर पेट हाजर पातशाह जिन्हें खजान माया सुख जाने भरपूर करने सत खालसा काज जाच कर पुलों चुको खिमा फतेह जवाब आप

अगम निगम उदरण जरा गुरु रास थपयो परगामी तारण तारण आगे अंतक बजे ना।

थोड़ी दिन सतगुरु के ना पाया, मैं सतगुरु के ना पाया, सतगुरु विच आप रखे मन कर प्रगट आप सुनाया, सतगुरु मन ऐसा मुक्त है जो मुझे मोह चुकाया।

0: और सब तो पहला एक शब्द दसम पातशाह जी का कल्याण दाग दे विच बिन करतार ना कीर्तम मानो। सतगुरु जी ने धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने कल्याण दाग दे विच इस शब्द नु उच्चारण किया है। कल्याण पातशाह जी दसवीं आप उसे राग दे विच इस शब्द श्रवण करो। बिन करतार ना कीर्तन मानो आग अजोर अजय अविनाशी तेह परमेश्वर जान। आओ जपो सारे
1: बिन करतार

लिखा है, आओ ये राग अगाना है, ये भी कानड़े का एक प्रकार है। आओ इस पावन शब्द में जपो, हर गुण गाओ जगदीश, एका जी कीचे लखबीश।

0: धन धन साहिब जी ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी पवित्र बाणी का सत्कार कर दे आप जी संगत वालों बेहत मैं दादा जी सरबत मंदिर गुरु सिखी दाता सुख मनुख पक्ष ने चढ़िया कला देश प्रदेश मुख्य जागरण सतगुरु जी रोज चुकी खिमा कर फतेह बुलाई प्रवान करो वाहे वाहे
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

गर्व न कीजे नानका मत सिर आवे। करोड़िया तो केड़ी चीज का माण कर जवानी दा, ए जवानी सदा नहीं रही, आउंदी है चली जा। झूठा हुकूमत का माण कर दे। इस संसार च बड़े बड़े राजे महाराजे आ गए जिन्हों का नामो निशान नहीं है, माया का माण करदा यह भी झूठा हो। माया ये तो चलता पानी, ये माणवी की धर्मकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता, चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं। याद रख एक दिन पछताए। साहबां दा पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने सुने, पत्थर वर्गा मन पानी काठी सिर को रख दिती, दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह दे चरणां ते ते रोज लग पातशाह मेरू बख्श लो, मैं पापी मेरे कोलो भुल हो गए, अपने चेहरे के दाग जेड़े दिस दिन जे शीशे कोल जाइए, शीशे कोल ना जाइए तो पता ही नहीं लगता। इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हों का पता तो लगता है कि किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए। महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो जाए। अज धन गुरु नानक पातशाह जी धर्मकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रही, भुब्बा मार के रोई जाता, कहता है पातशाह मेरे बख्श, अरदास कर रहे आओ आप भी करिए। किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है ते नाले पर पहला सेवक बोलेगा, पीछे सारी समझ।

0: कई साक्षी जो गुरु का उपदेश सैबा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश को हृदय च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लौ सुखिए पर लौ सुहे ने हर पल आते मेले और कैरी सात संगत जिथे होस्टल दिया संत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरोवर साहेब अमरीकन सिंह ते गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साडे वीर अनुभाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उहदे च कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाणगे उस तो उपरंत कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन कह दीजिए उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरफुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेद शब्द आदर कर दे डालर अरदास कराने मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने सिखा बच्चिया सिखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा Thank you.

0: सत्य तुम वेला सच्य तेरे कण सच्य ब्राह्मण सच्य तेरे सच्य अकार सच्य तेरे कर्ण सर विचार सच्चा तेरा अमृत सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरे कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दाखिला करू सच्चे शब्दान सच्ची सब
1: सच्ची तेरी से सच्ची सलाह सच्ची तेरी खुद सच्चे भाषा ना सत्य सच्ची जो मर्ज में सो कच निकच महला बैला
0: बड़ी बड़ी बड़े बचाला बड़ी बड़े का सच नियो बड़ी बड़े जने चलता बड़ी बड़े जाने वाला बड़ी बड़े बुझ सब पाओ बड़ी बड़े जो पूछना दात बड़ी बड़े जाए आप नान करना कथनी जाए खींचा करना सर्व जाए महला दूजा ए जग सच्चे की कोठड़ी सच्चे का विजवास इतना उसमाए लेकिन हुक्म कर बनास इतना पानी कर लेकिन माया सिनवास एम भी आंकड़े दबे जीवन यार नाथ तू गुरुमुख जानी जान को आत करे पर

0: संतोषु जगदी सतवट ए देव जी का गैत पांडे कत नाय तुटे नाम लगे नाय जले न जाए तन समान स्नान का जी गल चले पाए चुप मोलना बजाऊंगे पास
1: का चढ़ाई रुद्र मथिया ओ मुआ चढ़ पिया बेतक का क्या अलग चोरियां।

कहना कहना जाए। शोकरता कादर करीम दे जिया रिस संभाए, साई कार कमावने तुर छोटी तिना पाए। नानके की वारी गुरु जी नाई जाए, सो करे जुत सिर जाए शुद्ध वाहे गुरु जी का खालसा वज फतेह। सहबे दो आलम आप जी दर को बरसाए बेन को।

इतनी सेवा प्रवान कर लो धनता दे जो गुरु जी आप साहेब गुरु ग्रंथ साहब जी की जूरी हजर विच बैठ के हरी जस हरी कीर्तन बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल सबन करो सरदास जी अपने उच्चे भाग संबंध है आप वर्गी साध संगत के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया है जेडे कि गुरु ग्रंथ साहब के रागा दे शौकी है नहीं ते ज्यादातर गुरुद्वारा त्रिमी कीर्तन चलता है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਹਨ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸਭ ਫਿਲਮੀ ਟੁਨਾ ਗਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੰਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਆਓ ਅੰਤ

अकाल पुरख अग्गे देश का भक्तिमान परम पिता परमेश्वर जी आप जी कृपा करो सारी छोरिया अपने पवित्र नाम की खैर पाओ जपो सारे कोई इस ना खाली ना जा

साहब महाराज जी आप जी परम पवित्र बाणी संकल्प करके आप जी संत दाता जी सर्वतंत्र गुरु सिखी दाता सुरमदत पक्ष ने चढ़ दिया कला आदेश प्रदेश की क्या करें।